आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई

0: समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले तीन दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉ सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of 81st United Nations General Assembly in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of United Nations General Assembly in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his counterparts from Iran and Russia, discussing a range of bilateral issues and cooperation in the BRICS grouping and the Gulf conflict. Mr. Jaishankar said that he met Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the

0: London. नमस्कार, आज की घर आंगन कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अमित कमाल।
1: और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजुला। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम एम 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
0: मंजुला, कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अमित। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कभी माँ का खाना, कभी पापा की डांट, कभी भाई बहन के साथ की गई शरारतें, और कभी परिवार के साथ बिताई गई वो शामें जब किसी महंगे सामान का नहीं बस अपनों का साथ की जरूरत होती थी।
0: हाँ मंजुला, आज हम भले ही अपने काम में व्यस्त रहते हों, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खोए रहते हों, लेकिन दिल के किसी कोने में वो पुराने दिन आज भी जिंदा है। याद है जब घर में मेहमान आते थे तो पूरा घर जैसे खुशियों से भर जाता था। माँ रसोई में कुछ खास बनाने लगती थी और बच्चे इधर उधर भागते थे और बड़े बुजुर्ग अपनी पुरानी बातें सुनाते थे।
1: और सही कहा अमित, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी हम सभी को कभी कभी रुक कर उन छोटी छोटी खुशियों को याद करना चाहिए जो हमारे जीवन को खास बनाती। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे यादों की उसी खूबसूरत दुनिया में जहाँ खुशियाँ छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। तो अमित, आज का सवाल सेगमेंट में हम अपने श्रोताओं से क्या पूछने वाले हैं?
0: मंजुला, आज का सवाल है, और शायद इसे सुनकर हमारे श्रोताओं को अपने घर की कोई पुरानी याद जरूर आ जाएगी। आज का सवाल है कि आपकी अपने माता पिता से जुड़ी बचपन की कौन सी याद है जो आपको अभी तक याद है? हमें बताइए अपनी वो प्यारी सी याद। अपने संदेश भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: जी हाँ दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपकी यादों का, आपके संदेशों का और उन खूबसूरत किस्सों का जिन्हें आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी छोटी सी याद किसी दूसरे श्रोता के चेहरे पर मुस्कान ले आए।

0: सुजाता फिल्म से ये गीत आपने सुना गीता दत्त और आशा जी की आवाज में। दोस्तों घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और घर आंगन कार्यक्रम में हम आपके लिए एक सेगमेंट लेकर आते हैं डेज ऑफ द डे की और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन जहां होती है आपके घर परिवार स्वास्थ्य और समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है विश्व गर्भ निरोध दिवस के बारे में क्योंकि आज यही दिवस है।
1: बिल्कुल अमित, विश्व गर्भ निरोध दिवस हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भ निरोध और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय लेने के लिए सही जानकारी उपलब्ध कराना है।
0: मंजुला, अनियोजित गर्भधारण को रोकने में सहायता मिलती है अगर व्यक्ति जागरूक हो जाते हैं और इसकी सही जानकारी होने पर गर्भावस्था के बीच पर्याप्त अंतर रखने में महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की तैयारी को ध्यान में रखा जा सकता है। और आज एक और
1: दिन है
0: मंजुला, परमाणु हथियारों की पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: बिल्कुल, और जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो दिल कांप जाता है। साल 1945 का वो अगस्त का महीना हिरोशिमा और नागासाकी, पल भर में सब कुछ राख हो गया। आज का दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को तोहफे में तबाही का डर देकर जाना चाहते हैं।
0: इस दिवस का जो उद्देश्य साफ है मंजुला, दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से बचाना। आज दुनिया भर में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर कभी इनका इस्तेमाल हुआ तो विजेता कोई नहीं होगा, हार सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की होगी।
1: बिल्कुल सही कहा, हथियार कभी शांति नहीं ला सकते, वो सिर्फ अस्थायी डर पैदा करते हैं। वैसे भी अमित, हमारे देश की नीति ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है।
0: और मंजुला, शांति तो भरोसे से आती है, बातचीत से आती है। सोचिए जो अरबों खरबों रुपए इन विनाशकारी हथियारों को बनाने और इन्हें संभालने में खर्च होते हैं, अगर वही पैसा दुनिया से गरीबी मिटाने, बच्चों को शिक्षा देने और बीमारियों के इलाज में लगाया जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

0: अपने माता पिता से जुड़ी कौन सी याद है जो आपको अभी तक याद है। हमारा मेल आईडी fmgolgia@gmail.com।
1: तो दोस्तों हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। और जैसा कि मंजुला तुम जानती हो, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक सफलता की कहानी लेकर आते हैं और आज हम एक ऐसी ही महिला की बात कर रहे हैं जिनके लिए कभी खेती परिवार के लिए सिर्फ पेट भरने का साधन थी। खेत में दिन रात मेहनत करने के बाद भी हाथ में उनके कुछ नहीं बचता था।
0: बिल्कुल अमित, आज हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के बरारी प्रखंड की सुजापुर पंचायत की रहने वाली रीना देवी की, जिन्होंने अपने काम से सभी को प्रेरणा दी है। पहले रीना देवी खेतों में दिन रात मेहनत करती पर सफलता ना मिलती, लेकिन आज वही रीना देवी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ गांव की दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने की राह दिखा रही हैं।
1: रीना देवी की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत सन 2014 में हुई। गांव में सीआरपी दीदी के माध्यम से उन्हें जीविका के बारे में जानकारी मिली। परिवार की शुरुआती तंगी के बावजूद उन्होंने माँ दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का फैसला किया। नियमित बैठकों में शामिल होकर उन्होंने बचत, ऋण और सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की। समूह से जुड़ने के साथ उनके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा।
0: बिल्कुल, और दोस्तों रीना देवी को जीविका समूह से जुड़ने के बाद बचत और ऋण की सुविधा मिली और अपने फैसले खुद लेने का हौसला आया और उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने का मन बनाया। शुरुआत में उन्हें इस नई खेती करने का डर भी लगा, लेकिन आज उसी खेती ने उनकी जिंदगी बदल दी है।
1: मंजुला, शुरुआती दो सालों तक कोई आमदनी नहीं हुई। पौधों की देखभाल, मेहनत और इंतजार ही उनकी पूंजी थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अगले साल तीसरे वर्ष में पहली बार करीब 4 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हुआ और बाजार में इसे बेचने पर अच्छी कीमत मिली। इसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, वो बढ़ने लगा। इससे उन्हें सालाना करीब 7 से 8 लाख रुपए की आमदनी हो रही है।
0: और अमित, नवंबर 2023 में उन्होंने समूह से 2 लाख रुपए ऋण लेकर 10 बीघा जमीन बटाई पर ली और मक्का की खेती भी शुरू की। क्या बात है, बेहतर तकनीक और मेहनत से करीब 400 क्विंटल मक्का का उत्पादन हुआ। ड्रैगन फ्रूट और मक्का से उनकी वार्षिक आय अब करीब 8 से 12 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है।
1: और दोस्तों रीना देवी की सफलता हम सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि हमें नित नया कुछ करते रहना चाहिए, कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है।

0: स्वतन फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: और दोस्तों, भारत को समझना हो तो सिर्फ उसके किले और महलों को मत देखिए, उसकी पुरानी बाजारों की गलियों में चलकर देखिए, वहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है। त्योहारों का मौसम हो, अमृत और बाजारों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत के पुराने बाजार ये सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये हमारी सभ्यता के खुले हुए पन्ने हैं, जहाँ सदियों पुरानी कारीगरी, खान पान, पहनावा और त्योहारों की परंपराएं आज भी दिखाई देती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं।
0: बिल्कुल चलते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के चांदनी चौक की। मुगल दौर में विकसित हुआ ये इलाका कभी व्यापार का बड़ा केंद्र था, आज भी इसकी गलियों में कपड़ों, आभूषणों, मसालों और मिठाइयों की दुनिया बसी है। त्योहारों के दिनों में इसकी रौनक जैसे कई पीढ़ियों की यादों को एक साथ रोशन कर देती है। अब चलते हैं वाराणसी। यहाँ की जो गलियां हैं मंजुला, अपने पुराने बाजार बनारसी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ठटेरी बाजार में पीतल और तांबे के बर्तनों की चमक हो या चौक की गलियों में साड़ियों और पारंपरिक सामान की दुनिया, यहाँ खरीदारी करते हुए लगता है जैसे शहर की संस्कृति को छू रहे हो।
1: क्या बात है। और राजस्थान की ओर बढ़ें तो जयपुर का जौहरी बाजार सामने आता है। गुलाबी शहर की पहचान बने इस बाजार में आभूषण, पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प की चमक दिखाई देती है। त्योहारों में सजी दुकानों के बीच चलना अपने आप में एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव। और फिर आता है अहमदाबाद का मानेक चौक। दिन में आभूषण और कपड़ों का व्यापार और रात में खाने पीने की चहल पहल। हैदराबाद का चार मीनार को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी बाजार कम दिलचस्प नहीं है। चार मीनार के पास जो ये बसा हुआ है ऐतिहासिक बाजार अपनी रंगीन चूड़ियों और पारंपरिक आभूषणों के लिए जाना जाता है। त्योहारों और शादियों के मौसम में इसकी चमक देखते ही बनती है।
0: और चमक देखते ही बनती है दोस्तों। अब चलते हैं कोलकाता की ओर, और कोलकाता का बड़ा बाजार भी शहर के पुराने व्यापारिक इतिहास की महत्वपूर्ण पहचान है। संकरी गलियां, लगातार चलती खरीद फरोख्त और अलग अलग समुदायों की व्यापारिक परंपराएं, ये इलाका आज भी महानगर की व्यवसायिक धड़कन का हिस्सा है। और मुंबई के
1: जो मार्केट्स
0: हैं, ये ऐतिहासिक बाजार कभी मुंबई के शुरुआती बड़े थोक और खुदरा बाजारों में शामिल थे। आज भी इसकी पुरानी इमारत और आसपास की चहल पहल शहर के बदलते इतिहास की कहानी कहती है मंजुला।
1: तो सोचिए दोस्तों, सदियां बदल गई, खरीदारी के तरीके बदल गए, अब हमारे पास ऑनलाइन बाजार है, घर बैठे सामान पहुंचता है। लेकिन इन पुराने बाजारों की खासियत ही कुछ और है। यहाँ सामान के साथ बातचीत मिलती है, दुकानों के साथ किस्से मिलते हैं, खुशबुओं के साथ यादें मिलती हैं, और हर त्योहार के साथ पुरानी परंपराएं फिर से जीवंत हो जाती हैं। शायद इसलिए भारतीय बाजार कभी सिर्फ बाजार नहीं रहे, ये शहरों की याददाश्त है, कारीगरों की पहचान है और त्योहारों की वो रौनक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है।
0: तो इस फेस्टिव सीजन में जब भी किसी पुराने बाजार की गली से गुजरे, जरा ठहरिएगा, क्योंकि हो सकता है उस दुकान पर रखी कोई चीज, छोटी सी चीज, सिर्फ सामान ना हो, वो भारत की किसी पुरानी कहानी का एक टुकड़ा हो। मंजुला,
2: झुमका गिरा रे, हाय।

0: मेरा साया फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड 100.8 MHz पर।
1: और मेल्स आने शुरू हो गए हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं, जो सवाल हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने लिखा है कि 10th क्लास में था तब मम्मी डैडी एग्जीबिशन में ले गए थे, आज भी याद है काफी मजे आए थे। और दूसरा मेल कौन सा है?
0: दूसरा मेल हमारे पास आया है ख्याला से उमेश कुमार जी का। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, मुझे अपने पिताजी के वो दिन याद आते हैं जब वो हमारे लिए दशहरी आम लाते थे और माता जी किसी भी त्योहार पर कोई भी मीठी चीज बनाकर खिलाती थी।
1: और अंजना सफाया जी लिखती हैं, नमस्कार आप दोनों बहनों का, बचपन में मेरे पापा ये गीत गाकर हमें सुलाते थे, बहुत याद आती है जब ये गीत सुनती हूँ, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, बहुत ही खूबसूरत।
0: और हमारे पास आया है बल्ली मारान से नवाब अहमद भारती जी का मेल। ये लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो परिवार एक जगह इकट्ठा रहता था और हमारे बड़े माता पिता हमें कहानियां सुनाया करते थे, ये इन्होंने लिखा है।
1: और डॉक्टर राजेश्वर राव जी ने लिखा है कि उनको याद आता है वो पल जब वो बाहर से लोग आते थे और उनकी मम्मा इनके लिए फूड प्रिपेयर कर रखती थी, और जो इन्होंने सिंगल बाइट के बारे में लिखा है कि शी वुड नॉट ईट अ सिंगल बाइट अंटिल वी हैव ऑल फिनिश्ड आवर मील, मतलब जब तक हम पूरा खाना नहीं खाते थे वो नहीं खाती थी। बहुत ही खूबसूरत मेल है आपका। और अगला
0: मेल हमारे पास सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी का आया है। इन्होंने सिर्फ लिखा है कि आदरणीय मंजुला जी और अमित जी सादर प्रणाम, और ये शायद सवाल समझ नहीं पाए हैं तो बस इन्होंने ये लिखा है कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके मेल्स का। आगे भी इसी तरह से अपने प्यार बरसाते रहिए और मेल्स लिखते रहिए।

0: कालिया फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में, और आप क्या बात करने वाली हैं
1: अमित, कभी सोचा है कि एक कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं होता है बल्कि पूरी कहानी कैसे बन सकता है? हमारी भारतीय कला परंपरा में कुछ ऐसी ही कहानी कहती है, कलमकारी कपड़ों पर बनी बारीक आकृतियां, पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी देवी देवताओं की कथाएं और हमारी संस्कृति से जुड़े प्रसंग, ये सब मिलकर कलमकारी को सिर्फ एक वस्त्र कला नहीं बल्कि चलते फिरते इतिहास

0: का रूप दे देते हैं।
1: कहा जाता है मंजुला कि कलमकारी शब्द बना है कलम और कारी से, यानी कलम से की गई कारीगरी। इस कला में कपड़े पर चित्र और डिजाइन बनाने के लिए हाथ से काम किया जाता है और पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। कलमकारी की एक खास शैली है मछलीपट्टनम शैली, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम से है। कभी ये इलाका समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यहाँ तैयार किए गए खूबसूरत ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े अपनी बारीक कारीगरी और सुंदर डिजाइनों के कारण दूर दूर तक पहचाने जाने लगे थे।
0: देखिए दोस्तों, अमित ने पूरी कहानी बता दी। और सोचिए, सदियों पहले जब आज जैसी डिजिटल दुनिया नहीं थी, तब भारतीय कारीगरों के हाथों से बनी कला समुद्री रास्तों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही थी। और यही तो है हमारी हस्तकला की खूबसूरती। हमारी मिट्टी से निकली कला ने दुनिया को प्रभावित किया और भारतीय शिल्पकारों की मेहनत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। और आज भी कई कारीगर पारंपरिक तकनीकों, प्राकृतिक रंगों और पीढ़ियों से चली आ रही कला को संजोए हुए हैं। हर मोटिफ के पीछे एक कहानी और हर रंग के पीछे एक परंपरा।
1: हर रंग के पीछे एक परंपरा, लेकिन कलमकारी को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका शायद यही है मंजुला, कि हम इसे सिर्फ संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम्स या इतिहास की किताबों में ना देखें, इसे अपने घरों में जगह दें, अपने परिधानों में अपनाएं, अपने बच्चों को इसकी कहानियां सुनाएं
0: और कारीगरों के हाथों की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। क्योंकि विरासत सिर्फ वो नहीं होती जिसे हम अतीत के रूप में याद करते हैं, विरासत वो होती है जिसे हम वर्तमान में जीते हैं। तो अगली बार जब किसी कलमकारी साड़ी, दुपट्टे, कुशन कवर या किसी खूबसूरत वस्त्र पर आपकी नजर पड़े, तो सिर्फ उसका रंग और डिजाइन मत देखिए, उसके पीछे जो छिपी है सदियों पुरानी कहानी को भी महसूस कीजिए।

0: कांटा फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में।
1: और दोस्तों अब बात उस दबाव की जिसे शायद हम में से बहुत सी महिलाएं रोज महसूस करती है, परफेक्ट महिला बनने का दबाव। बचपन से ही हमें कई तरह के सांचे दिखाए जाते हैं, अच्छी लड़की ऐसी होती है, अच्छी पत्नी ऐसी होती है, अच्छी बहू को ऐसा करना चाहिए, अच्छी माँ को हर समय उपलब्ध रहना चाहिए, और अगर आप कामकाजी महिला हैं तो घर और दफ्तर दोनों जगह अपना 100% देना चाहिए, और अगर कभी आप थक जाएं तो लगता है जैसे हमने कुछ गलत कर दिया। सच तो ये है कि ऐसी कोई महिला है ही नहीं जो परफेक्ट है। हर महिला की अपनी परिस्थितियां हैं, अपने सपने हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी लड़ाइयां हैं। किसी दिन वो बेहद मजबूत होती है तो किसी दिन उसे किसी के कंधे की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा मंजुला, किसी दिन उसे किसी के कंधे की जरूरत होती है, और कभी वह बहुत आत्मविश्वास से भरी होती है तो कभी खुद से ही सवाल करती है, और यही तो इंसान होना है। हमें महिलाओं को परफेक्ट बनने की नहीं, अपनी फैसले लेने की आजादी चाहिए। उसे ये तय करना चाहिए कि उसके लिए सफलता का मतलब क्या है। हो सकता है किसी के लिए सफलता बड़ा पद हो, किसी के लिए अपना घर, किसी के लिए दुनिया घूमना, किसी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, और किसी के लिए बस एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो खुद से खुश हो।
1: और याद रखिए, हर भूमिका निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और सबसे जरूरी, आप एक अच्छी इंसान हो सकती हैं बिना परफेक्ट हुए, क्योंकि आपकी जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर किसी के दिए हुए पैमाने पर आपको पूरे अंक लाने हैं। और अमित एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी असली पहचान ही खो दें,
0: क्योंकि दुनिया को खुश करने के लिए जी गई जिंदगी शायद दुनिया को पसंद आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद आए। तो आज से खुद को एक नया वादा कीजिए, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीऊंगी, अपनी पसंद चुनूंगी, अपनी गलतियों से सीखूंगी और अपनी पहचान पर गर्व करूंगी।
1: थोड़ी अधूरी रहिए, थोड़ी अपनी रहिए, क्योंकि खूबसूरत वही जिंदगी है जिसमें किसी और की उम्मीदों से ज्यादा आपकी अपनी आवाज सुनाई दे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म रजनीगंधा से।
1: दोस्तों अक्टूबर का महीना आने वाला है, उमस वाली गर्मी अब जाने वाली है और सुबह शाम की हल्की सी गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। ये मौसम इतना शानदार होता है कि चाय की चुस्की के साथ साथ दिल करता है कि घर की बालकनी या गार्डन में थोड़ा वक्त बिताया जाए। और सच कहूं मंजुला, मुझे तो अपने हाथों से मिट्टी को छूना और उसमें नए पौधे लगाना, इससे सुकून देने वाला एहसास कोई हो ही नहीं सकता।
0: अमीर शायराना हो रही है और आज आपके इसी सुकून को थोड़ा और बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने में आपको अपने घर में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए जो आने वाले हफ्तों में आपके घर को खुशबू और रंग दोनों से भर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फूलों के राजाओं की। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपका गार्डन किसी फूलों की नुमाइश जैसा दिखे, तो इस महीने में आप गेंदा यानी मैरीगोल्ड, पिटूनिया और गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं। अक्टूबर इसकी नर्सरी तैयार करने या छोटे पौधे लगाने का सबसे परफेक्ट टाइम है।
1: दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि अमिता हमारे पास तो फूलों के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं जनाब, अगर आपके पास सिर्फ एक छोटी सी बालकनी या खिड़की है तो आप इसमें इस आगामी महीने में फूलों के साथ साथ ताजी सब्जियां भी उगा सकते हैं। जी हाँ, अक्टूबर में बड़े गमलों के अंदर पालक, मेथी, धनिया और हरी मिर्च बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। सोचिए मंजुला, जब आपके खुद के लगाए पौधों से तोड़ी हुई ताजी मेथी के परांठे या धनिया की चटनी बनाएंगे तो स्वाद कितना बढ़ जाएगा।
0: तो दोस्तों फिर देर किस बात की, इस अक्टूबर अपने घर को दीजिए एक नया ग्रीन मेकओवर।

0: गीत आप सुन रहे हैं अमित कुमार की आवाज में, फिल्म है तेरी कसम। और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब इजाजत लेने का वक्त हो चला है।
1: उम्मीद है आज की प्रस्तुति आप सबको पसंद आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए मंजुला
0: अमित कमल को इजाजत।
1: नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। Thank you.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सरेला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर

0: करते हुए श्री मिस्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea, and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. delivering India's statement at the 50th annual

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की कथा की बात करें तो अमरनाथ एक जाने माने वकील अपने इंसाफ की समझ के लिए जाने जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात सोनिया से होती है। वह उनसे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें वह इंटरेस्टिंग लगती है। अमर के पिता चाहते हैं कि वह शादी कर ले और उन्हें अंजू की फोटो दिखाते हैं। अंजुन एक विदेशी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी होती है और वह इंसाफ और गरीबों की मदद करने में विश्वास करती है। वे और अमर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जल्द ही उनकी सगाई हो जाती है।

श्रोताओं, आगे की जो कहानी है वह कुछ इस तरह है कि एक रात एक लोकल मेले में जाने के बाद सोनिया पर शंकर ने हमला किया। वे भागते भागते अमर के घर चली जाती है और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। अकेले घर में जहां सोनिया शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो जाती है, बाद में अमर का जमीर उसे कचोटता है क्योंकि वह अपनी गलती छिपाने और अंजू से सगाई करने की कोशिश करता है। अंजू को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि बात क्या है।

जब अंजू को कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसी बीच सोनिया को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। वे अपने बच्चे के पिता का नाम बताने से मना कर देती है और गांव वाले उसे गांव से निकाल देते हैं। शंकर किसी तरह ये पता लगा लेता है कि सोनिया के बच्चे का पिता कौन है और वह उससे बदला लेना चाहता है।

शंकर के मरने के बाद अमर पर उसकी हत्या का आरोप लगता है और उसकी और सोनिया के बारे में सच्चाई सामने आ जाती है। गांव वाले आखिरकार सोनिया को मारना चाहते थे। अंजू उसका साथ देती है और उसकी रक्षा करती है। आखिर में वे ये पक्का करती है कि अमर ऑफिशियली सोनिया से शादी कर ले और अपना काम पूरा होने के बाद गांव छोड़ दे।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की जो फिल्म है वो है 1954 की फिल्म अमर। और इस कार्यक्रम में मैं आपकी होस्ट दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, और जो हमारे पास पहला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का। इनके साथ हैं पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्रजी शाह। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। नितेश देवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन छत्तीसगढ़ से। दिग्दर्शन कौर हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है कविता गौर। अगला जो संदेश है वो है पूनम गजनेजा का, जलालाबाद से, और इनके साथ है सुरेश गजनेजा। अजीत भापसर हमें लिखकर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है वो है किशोर हिवराले का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कल्याण मुंबई से, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले। गुरमीत सिंह हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल। आर कुमार हमें लिखकर भेज रहे हैं मंडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, फागुराम यादव हमें लिखकर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, इनके साथ हैं ज्योति यादव, उजस्वी यादव। अगला जो संदेश है वो है हरजिंदर शिंदा का, गांव नथाना पंजाब से, जसवीर जस्सी, सीता और गीता इनके साथ हैं। पिपरिया से हमें लिखकर भेज रहे हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता। धर्मेंद्र छीपा में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। संजय ढींगिया में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक हमें लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज।

मुल्तानी ढांडा से सुर संगम रेडियो श्रोता संगम में लिखकर भेज रहे हैं, गुजरात से अजीत भाव सर, प्रेमिका भाव सर डोलराना में लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ ये हमें लिखकर भेज रहे हैं, नेहरू विहार दिल्ली से यशमीत यशो में लिखकर भेजा, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो आइए श्रोताओं इस फिल्म की अगली गीत की ओर बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोता, हमारे पास जो अगला संदेश है वो है देवशंकर तामुरिया का, इनके साथ है अजय देव, तुषार देव, डोरी बीबी, पूजा तामुरिया, राधिका, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बालो छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो है फारूक अली खान का है। मुकेश बट्टा हमें लिखकर भेज रहे हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से। रोजी डिकैस्ट्रो में लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है जोन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। और जो अगला संदेश है वो है भूषण खेरा का। इशक मोहम्मद हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर पानीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं, सोनीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं। रोहित वशिष्ठ, इनके साथ है प्रेम सागर, शुभलता, अमृतसर से हमें लिखकर भेज रहे हैं। तो श्रोताओ, आइए सुनवाती हूँ इस फिल्म का अगला गीत, और इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम भी यही समाप्त।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे ठीक दिन के 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे आ रही दीक्षा को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में यानी 1:40 पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। विदेश सकत्र विक्रम मिसरी ने विकासशील देशां दी आवाज अते नुमाइंदगी नूं वधाउण लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च सुधार दी लोड़ ते जोर दिता। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय दे सकत्र पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने आलमी महामारी नाल नजिठण लई तैयारियां नूं मजबूत करन प्रति भारत दी वचनबद्धता दोहराई। भारत दे चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्याकांत अज पटना च देश दे पहले पीड़ित अधिकार केंद्र दा उद्घाटन करनगे। अते एशियाई खेडां च भारत दी महिला कबड्डी टीम ने ईरान नूं हरा के सोने दा तमगा अपने नां कीता। हुण खबरां विस्थार दे नाल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज न्यूयॉर्क विच 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा दे उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। इस सैशन दा विशा है विश्वास बहाल करना, तब्दीली दा प्रबंध, एक जेहा संयुक्त राष्ट्र जो सारयां लई कम करे। महासभा विच संयुक्त राष्ट्र दे सारे 193 मैंबर देशां दे राष्ट्रपतियां, प्रधानमंत्रियां अते सीनियर नुमाइंदे शामिल ने जो अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दयां ते अपने देशां दीआं तरजीहां अते नजरिए पेश करनगे। संयुक्त राष्ट्र मुताबक 81वां सैशन आलमी सहयोग नूं मुड़ सुरजीत करन, निरंतर विकास टीचियां नूं अगे वधाउण अते शांति, मान सम्मान ते समानता लई समूहक कार्रवाई नूं उत्साहित करन ते केंद्रित होवेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क च 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा तों अलावा रूस दे विदेश मंत्री सरगई लावरोव नाल मुलाकात कीती ते दुवल्ले मुद्दयां दे नाल नाल कई मौजूदा मुद्दयां ते चर्चा कीती। सैशन दौरान उन्हां ने ईरान दे विदेश मंत्री अब्बास अराकची नाल भी मुलाकात कीती। दोवां आगुआं ने खाड़ी संघर्ष नाल संबंधित ताजा घटनाक्रम उत्ते चर्चा कीती। ब्राजील, चीन, मिसर, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षणी अफ्रीका अते संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का जिक्र करदिआं जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशां दे आगुआं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा भी कीती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई दीआं संभावनावां दा इस्तेमाल करन दे नाल नाल इस दे संभावी प्रभावां दा अनुमान लाउण अते जोखमां नूं घट करन दी लोड़ उत्ते जोर दित्ता है। ओह अज ग्रीस दे विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस दे नाल अंतरराष्ट्रीय शांति अते सुरक्षा दे संदर्भ च एआई खास

0: ग्रेल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमरीका ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे, ईरान की तेल की फरोख्त पर से बंदिशें हटा ले और लेबनान समेत जंगबंदी पर अमल करे तो वो आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल देगा और 7 दिन के अंदर अंदर अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू कर देगा। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में कबड्डी में खवातीन की भारतीय टीम ने सनसनीखेज फाइनल मैच में आज ईरान को 34 के मुकाबले 37 से शिकस्त दी। इस तरह भारत ने अपना तीसरा सोने का तमगा हासिल किया। इससे पहले भारतीय मैराथन खिलाड़ी सामन बारवाल ने मर्दों के मैराथन जुमरे में 44 बरस के वक्फे के बाद भारत के लिए चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। भारत ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मुकाबलों में आज चांदी का तमगा जीता। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने 1763 प्वाइंट के साथ ये कारनामा अंजाम दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीतने पर सावन बारवाल को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वाश में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नौम्र भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आलमी नंबर 6 जापान की सातोमी वातानाबा के खिलाफ मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मसनूई जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कानात तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी अमन सलामती के पस मंजर में मसनूई जहानत के जोखिम के मुतालिक तकरीब की मुश्तरक सदारत की। जनाब जयशंकर आज दोपहर न्यूयॉर्क में 81 में अक्वामी मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अक्वामी मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में फौरी इस्लाहात की अपील की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jayashankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by AI, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security with an emphasis on maritime security alongside Foreign Minister of Greece George Yerapetrates. During the event, Dr. Jayashankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India at the United Nations. He highlighted that the New Delhi Declaration emphasizes democratic access to AI resources, building secure and trustworthy systems, investing in human capabilities and harnessing AI for economic growth and social good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals and promoting collective action for peace, dignity and equality. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries, delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers of the Group of 77 or G77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York. Mr. Misri called for a collective effort

0: India has made a strong medal haul at the IIT Nagoya Asian Games today, adding 4 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. The latest results have taken India's overall medal tally to 27. A report.
1: The Indian women's kabaddi team clinched the gold medal, defeating Iran 37-34 in a closely contested final. Captain Pushpa Rana led India to victory. In athletics, Savan Barwal bagged silver in the men's marathon, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilotama Sen, Vidarsaki Vinod and Ashi Chokse secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Vilvan Senthil Kumar won bronze. With these 4 medals, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver and 13 bronze. Komadi Parekh, Akashwani News, Delhi.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है

0: श्वास बहाली परिवर्तन का प्रबंधन एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के

0: कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई

0: बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
2: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमरीका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमरीका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: درسق 35 نیشنل نیوز سروس 24x7 کنے پروگرام لا انگن انچگت بین میڈیم ویوی کا دیو آکاشوانی کرگلین وقس بو نیمی بجا نیز نفید سنسوک کسی تا پروگرام نیمزد بلتی پروگرام رگز کت

जय हिंद। फौज भाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूं आपके रेडियो सखी सूफी फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपकी नजर फिल्म परदेसी से गीत अनुराधा पोडवाल, अनुप जलोटा और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, आनंद मिनल का संगीत।

अब से कुछ ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे चंद फिल्मी नामे। सुबह 3:30 सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे राजस्थानी लोकगीत। शाम 4:00 आप लुत्फंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाकमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये था एक मुख्तसर तारुफ।

0: एक हजार इकहत्तर किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेंडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मस्नूई जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कान तलाश करने की अपील की है। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैन अवी अमन सलामती के पस मंजर में मस्नूई जहानत के जोखिम से मुतक तकरीब की मुश्तरक सदारत की। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अकवाम मुतहदा सलामती काउंसिल में फौरी असलाहत की अपील की है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुतहदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निमटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तई भारत के अज़्म का इरादा किया। ईरान ने अमरीका की जानिब से शरायत मान लिए जाने की सूरत में 7 दिन के अंदर आमनाए हुरमुज दोबारा खोलने से मुतालिक तजवीज़ पेश की है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय कबड्डी टीम ने ईरान को शिकस्त देते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं भारत ने खवातीन के निशानेबाजी और मर्दों के मैराथन में भी चांदी के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मस्नूई जहानत के जरिए पेश किए जा रहे इम्कानात को परवान चढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब जयशंकर ने मस्नूई जहानत के असरात और उससे मुतालिक जोखिम को मलहूज खातिर रखने की भी बात कही है। आज अकवाम मुत्तहदा में बैन अल-अक़वामी अमन सलामती बिलखसूस बहरी सलामती के तनाजुर में मस्नूई जहानत के मौजू पर मुनक़िदा तकरीब की मुश्तरक सदारत करते हुए उन्होंने ये बात कही। जनाब जयशंकर ने यूनान के वजीर खारजा जॉर्ज जेरापेट्रिटिस के साथ इस तकरीब की सदारत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत और बहरी सलामती अकवाम मुत्तहदा में भारत की अहम तरीन तरजीहात बने रहेंगे। उन्होंने वाजे किया कि नई दिल्ली एलामिया मस्नूई जहानत के वसायल तक सभी की रसाई, महफूज और काबिल एतबार सिस्टम की तामीर और माशी नमो और समाजी बेहतरी के लिए मस्नूई जहानत को परवान चढ़ाने और इंसानी सलाहियतों में सरमायाकारी पर जोर देता है। जनाब जयशंकर ने यह भी वाजे किया कि बहरी शोबे में मस्नूई जहानत बहरी शोबे से मुतालिक आगाही, तलाश और बचाव, आफात से निमटने के तरीक़ेकार, मुश्तबा सरगर्मियों की पहचान और बंदरगाहों और अहम बुनियादी ढांचे की मजाहमत को तकवीत दे सकती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने खलीज बहिर अहमर और बहिर अस्वद में तजारती जहाज़ों और जहाजियों पर बार बार किए जा रहे हमलों पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमलों को अब मजीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जयशंकर अकवाम मुत्तहदा में 81वीं जनरल असेंबली के इजलास के दौरान जहाजरानी और जहाजियों की हिफाजत और सलामती पर दोस्तों के ग्रुप की पहली मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद तवज्जो हासिल करने के लिए भारत और लाइबेरिया दोनों की जानिब से किए जाने वाले नए इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत जहाजियों का एक बड़ा वसीला है और लाइबेरिया जहाजरानी की दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। ये दोनों मुल्क समंदर में हिफाजत और सलामती को मुस्तहकम बनाने के मकसद से यकजा हुए हैं। इस कदम का मकसद समंदर में मजीद हिफाजत के लिए एक मुशावरती फ्रेमवर्क कायम करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि इस शोबे के तहत किए जाने वाले मुजाकिरात में अहम फरीकैन की और ज्यादा अहमियत है। उन्होंने खलीजे अमान में एंटीगुआ और बारबुडा के परचम बरदार एक बड़े जहाज MV केप डाउ

पर हालिया हमले की जानिब इशारा किया, जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। डॉक्टर जयशंकर ने पानामा के परचम बरदार तेल टैंकर एल गैया का भी जिक्र किया, जिस पर आबनाए हुरमुज में हमला किया गया था, जिसके नतीजे में भारतीय जहाज के एक हमले का कारकुन लापता बताया गया था। वजीर खारजा ने MV ओमोर्फी और MV गोल्डर लियो समेत बुहरा असवद में शहरी जहाजियों पर किए गए हमलों की जानिब भी तवज्जो मबजूल कराई। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने अक्वामे मुत्तहदा के सलामती काउंसिल में इस्लाहात की फौरी जरूरत पर जोर दिया है, ताकि इस इदारे में तरक्की पजीर मुल्कों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर G77 वुज़राए खारजा की 50वीं सालाना मीटिंग के मौके पर भारत की जानिब से बयान देते हुए जनाब मिश्री ने आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों को जाब्तों पर अमलावरी करने वाले मुल्कों की बजाय जाब्ते तश्कील देने वाले मुल्क बनाने की खातिर मुश्तरका इकदाम पर जोर दिया। उन्होंने अवाम पर मरकूज और तरक्की पर मबनी कसीर रुखी निज़ाम में G77 की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पुण्या सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निमटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तहत भारत के अज़्म का इयादा किया। मीटिंग से खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफा ने हुकूमत और समाजी सतह पर वबाई बीमारियों की रोकथाम और कार्रवाई के तहत भारत की मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया, जिसमें सेहत से मुतालिक मुमकिन तौर पर कई हंगामी हालात का अहाता किया गया है। मोहतरमा श्रीवास्तव ने सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निमटने के मकसद से निज़ाम को सहूलतों से आरास्ता करने की खातिर लेबॉरटरी नेटवर्क, हंगामी हालात में तालमेल, तिब्बी अफरादी क़ुव्वत और तिब्बी निगहदाश्त की सलाहियत के सिलसिले में भारत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बताया। ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमरीका ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे, ईरान की तेल की फरोख्त पर से बंदिशें हटा ले और लेबनान समेत जंग बंदी पर अमल करे, तो वो आबनाए हुरमुज को दोबारा खोल देगा और 7 दिन के अंदर अंदर अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू कर देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची ने तजवीज़ की तफसीलात अक्वामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल के बाहर नामा निगारों को बताई। उन्होंने कहा कि ईरान अमरीका के साथ अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम के बारे में तातुल का शिकार बातचीत को दोबारा शुरू करना चाहेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अजीम बंगाली समाजी मुसलह ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। जनाब शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विद्यासागर ने तालीम को समाजी तब्दीली का ताकतवर जरिया बनाया। उन्होंने कहा कि बरना परिचय के जरिए विद्यासागर ने नए बंगाली हरूफ तहजी पेश किए और बेशुमार बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे खोले। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में कबड्डी में खवातीन की भारतीय टीम ने सनसनीखेज फाइनल मैच में आज ईरान को 34 के मुकाबले 37 से शिकस्त दी। इस तरह भारत ने अपना तीसरा सोने का तमगा हासिल किया। इससे पहले भारतीय मैराथन खिलाड़ी सावन बारवाल ने मर्दों के मैराथन जुमरे में 44 बरस के वक्फे के बाद भारत के लिए चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। भारत ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मुकाबलों में आज चांदी का तमगा जीता है। तिलोत्तमा सेन, विद्रसा विनोद और आशी चौकसी की 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने 1763 पॉइंट्स के साथ ये कारनामा अंजाम दिया। चीन ने रिकॉर्ड 1773 पॉइंट्स के साथ सोने का तमगा जीता। वहीं कजाकिस्तान ने 1754 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा अपने नाम किया। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीतने पर सावन बारवाल को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वैश में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 9 उम्र भारतीय खिलाड़ी अनहात सिंह ने आलमी नंबर 6 जापान की सतोमी वतानबे के खिलाफ मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। वहीं मर्दों के सिंगल्स में भारत के अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को 3-0 से शिकस्त देकर सोने के तमगे वाले राउंड में पहुंच गए हैं। इन कामयाबियों के बाद भारत 27 तमगों के साथ 12वें पायदान पर पहुंच गया है। इनमें सोने के 3, चांदी के 11 और कांसे के 13 तमगे शामिल हैं। इस दौरान सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स 2026 में खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद
और आशी चौकसी को मुबारकबाद पेश की।

0: है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन खिलाड़ियों की कामयाबियों से टीम वर्क की ताकत पर मुश्तरक अज़्म का इजहार होता है। सदर जमहूरिया ने मिक्स डबल्स स्क्वैश मुकाबले में कांस्य का तमगा जीतने पर जोशना चिनप्पा और सेंथिल कुमार वेलवन को भी मुबारकबाद दी है। इसके अलावा सदर जमहूरिया ने खवातीन की भारतीय कबड्डी टीम के लिए भी शानदार कारकर्दगी पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मस्नूई जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कान तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैन अलाक्वामी अमन सलामती के पास मंजर में मस्नूई जहानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुश्तरक सदारत की। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अकवाम मुतहदा सलामती काउंसिल में फौरी असलाहत की अपील की है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पुण्या सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुतहदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निमटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तहत भारत के अज़्म का इदा किया। और ईरान ने अमरीका की जानिब से शराइत मान लिए जाने की सूरत में 7 दिन के अंदर आबनाए हरमूज दोबारा खोलने से मुतालिक तजवीज पेश की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश नागिन फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ। मौसीकी तरतीब दी खुद हेमंत कुमार ने।

सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत, फनकार थीं रेखा व्यास और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रेडेश पर हमारी नशा जारी हैं। और लीजिए अब सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज कर रहे हैं CID फिल्म के नगमे से, आवाज़ें आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की। नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकी OP नैयर की।

यह है बम्बई का बाबू फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, मौसीकी एस डी बर्मन की।

पेइंग गेस्ट फिल्म का नगमा सुन रहे थे अभी, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में मौसीकी एसडी बर्मन की थी। और लीजिए सुनिए, जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, नगमा निगार हसन जयपुरी, मौसीकी शंकर जयकिशन की।

सोलवा साल फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में। और इसे अब सुनिए माया फिल्म का दो गाना, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं।

घर के सामने। इस फिल्म का नगमा सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस नगमे को कलामबंद किया हंसा जयपुरी ने और तर्ज बनाई एस डी बर्मन ने।

0: इसको किस तरह से सक्सेस करें, किस तरह से हम सोर्स को जो है उसको सस्टेनेबल बनाएं, वो जो है वो मेन चैलेंजेस है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह से हमारे जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और उस वजह से जो जितने स्प्रिंग्स हैं हमारे डिप्लीट्स हो रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: हमने बहुत सारे जगहों पर देखा, जेजम करने के बाद कुछ एक दो जगहों पे, एक दो स्कीम में हमने देखा कि सारा कुछ हो जाने के बाद पानी जो स्प्रिंग था वो डिप्लीट हो गया।
1: बिल्कुल
0: तो वो जो चैलेंज है 2.1 जो जेजम हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अनाउंस किया है, तो उसमें उनका मेन फोकस जो है यही है कि सस्टेनेबिलिटी हम किस तरह से सोर्स को बनाएं, उसके लिए हम क्या करें, जैसे चेक डैम्स बनाएं, जो ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है उसको कैसे रिटेन करें, फिर हम जैसे ये ग्रे वाटर जो है उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करें, फर्दर किस तरह से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें ग्रे वाटर के थ्रू, या इसी तरह से और भी मैकेनिज्म जो जिससे हम जो है अपने स्नो को हार्वेस्ट कैसे करें, या जैसे इस तरह से बहुत सारे चीजों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रहा है और 2.0 में वही चीज को इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि यही आने वाले दिनों में यही मेन चैलेंज है सर।
1: तो जेजेएम जनाब, जब से ये शुरू हुआ है लोगों के लिए बहुत बारिश से इनके लिए आसानी रही है। अब लोगों का ये कहना है कि जिन जिन घरों में आप लोगों ने नल का जो पानी पहुंचाया है, अब जो बाद में जो अलग अलग से जो नए घर बने हैं या जो मतलब फैमिली पार्टीशन की वजह से अलग हुए हैं, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ये पानी पहुंचाने का क्या इकदाम किया है आपने?
0: बिल्कुल सही, 2019 में जब सेंसिस हुआ था, जो उस वक्त जो 18,922 जो मैं बता रहा हूँ हाउस होल्ड जो है, वो 2019 की सेंसिस जो था हमारे पास, वही जो है जेजेएम आईएमएस पोर्टल पे चढ़ा है। तो हमें पहले उस घरों को इंश्योर करना था। अभी उसके बाद तो 5-6 साल हो गया है, तो हर साल जो है 5% या 2% के हिसाब से जो है हर गांव में जो है घर जो है वो नए बन रहे हैं। तो उसको टेकअप करने के लिए अभी रिसेंट बैक, क्योंकि अभी अब 96.46 का क्लेम गया है, जल्दी ही ये जो हर घर में जो प्रीवियस जो हाउस होल्ड थे जिसका रिकॉर्ड जो है आईएमएस पोर्टल पे है वो फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेक्रेटरी के थ्रू अभी हमें डायरेक्शन आया है कि जो भी लेफ्ट आउट हाउस है या न्यू कंस्ट्रक्शन है उनके लिए अलग से डीपीआर बना के बहुत जल्दी जो है पुट अप करो, ताकि उस पर भी काम किया जाए। ये जो 2.0 आप जेजेम जो है उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको जो है आमली जामिया पहलाना है
1: इंशाल्लाह। जरूर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जल जीवन मिशन में अवामी शमूलियत को मरकजी अहमियत हासिल है, खासतौर पर विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज और पानी समितियों के जरिए। करगिल में मकामी आबादियों, पंचायतों और खवातीन के पीने के पानी के स्कीमों के इंतजाम, निगरानी और देखभाल में कितनी फ़ाल शमूलियत है?
0: ये जेजेम अगर किसी भी तरीके से आज कारगिल में सक्सेस हुआ है तो लोगों की कोऑपरेशन से ही हुआ है, शमूलियत से ही हुआ है। क्योंकि इसका मेन जेजेम का जो मेन बैकबोन इसमें रहा है वो रहा है पंचायत का लद्दाख ऑटोनोमस है, जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। हाँ जी, तो इसमें पानी समिति है, विलेज लेवल पे कमेटी है, जैसे ही बनेगा तो यही कमेटी जो है अगर पार्टिसिपेट करके, यहाँ मैं और एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि जिस भी गांव में बहुत अच्छे से जेजेम इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें हमने ये देखा कि वहां के गांव वालों ने बहुत बढ़ चढ़ के वो वहां पे हिस्सा लिया, चाहे वो VWSC के मेंबर के, चाहे वो DWSC मेंबर में जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, वहाँ के एरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, या चाहे विलेजर्स आम विलेजर्स है उनके सहानुभूति से। क्योंकि जेजेम ऐसा था जिसमें आपको खेतों से फेंसिंग लगा होता है, फेंसिंग से, किचन गार्डन से, कभी कभी तो बहुत सारे चीजों से होकर गुजरना होता था। तो गाँव वालों ने जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो पॉसिबल ही नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: तो इनमें डिस्प्यूट्स भी बहुत रहा है, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो PRI मेंबर ने जो कंट्रीब्यूशंस दिया है, या फिर जैसे वहां पे कमेटी है, पानी समिति है, या फिर हमारे काउंसलर साहबान है, या फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे मतलब SDM साहब है, या उस लेवल

0: जो उन्होंने इन डिस्प्यूट को हल करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत
1: बहुत ही मौसर
0: अप्रिशिएबल
1: रहा
0: है।
1: है।
0: और
1: बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे पूछना चाहूंगा जनाब अली, जल जीवन मिशन अब अपने अगले मरहले यानी जल जीवन मिशन 2.0 में दाखिल हो चुका है, जिसमें पायदारी ऑपरेशन व मेंटेनेंस, पानी के मेयार और खिदमत के मेयार पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जल जीवन मिशन 2.0 का कारगिल जिले के लिए खास तौर पर क्या मतलब है और इस मरहले के तहत पीएचई महकमा की अहम तरजीहात क्या होंगी?
0: जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि इसका मेन जो 2.0
1: जीरो
0: जो है जेजेम का, इसका मेन जो मोटिव है, पहले तो ये है कि जो सोर्स है उनको कैसे सस्टेनेबल हम बनाएं, उसको किस तरह से प्रॉपर तरीके से हमको इन्हेंस करें, और लॉन्ग रन में जो है लोगों को पानी का जो अवेलेबिलिटी है उसको कैसे इंश्योर करें, ये एक चीज है।
1: बिल्कुल
0: दूसरा जो चीज है कि जो लेफ्ट आउट या न्यू कंस्ट्रक्शंस है उनको जो है किस तरह से पानी हम पहुंचाएं, ये
1: जी
0: है। तीसरा जो है मेंटेनेंस जो है इसका, क्योंकि किसी चीज को बनाना वो इजी है आपको
1: इजी
0: पता
1: होता है
0: है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल,
0: उसको
1: इसको मेंटेन
0: मेंटेन
1: रखने के लिए,
0: करके लॉन्ग रन तक, क्यों अभी
1: चलाने के लिए।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली वो मेंटेनेंस का गैजेट भी बना के अभी आ गया है,
1: बिल्कुल,
0: तो मेंटेनेंस का भी वो सिलसिला
1: तो
0: जो
1: डिपार्टमेंट के
0: है
1: पास ये प्रोविजन भी है कि इसको मेंटेन भी रखे काफी
0: मेंटेनेंस
1: समय
0: का, हाँ
1: तक।
0: वो मेंटेनेंस का जो हम एसओपी कहेंगे या जो भी कहेंगे वो बन के आ गया है,
1: बिल्कुल
0: वो मेंटेनेंस भी अब इंश्योर हो गया कहीं ना कहीं। तो ये जो स्कीम है जेजेम बड़ा सक्सेसफुली होपफुली चलेगा। और जो लास्ट नॉट लीस्ट वो ये है इसका कि अब जैसे जल अर्पण हो रहा है, जैसे जी किसी गांव में कंप्लीट हो चुका है, हर घर में पानी पहुंच गया है, तो उसमें हम सर्टिफाइड करते हैं, जैसे पहले रिपोर्ट करते हैं कि हर घर में जो है पानी पहुंच गया है, फिर उसको सर्टिफाइड करते हैं, फिर उसके बाद जल अर्पण करते हैं। जल
1: बिल्कुल
0: अर्पण का मतलब है कि इस घर गांव में जो है पूरा पानी पहुंच गया है, अब
1: बिल्कुल
0: गांव वाले भी पूरा रिस्पॉन्सिबल ले लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, महकमे
0: और
1: की तरफ से
0: हाँ
1: तो इनको बना के दे
0: जी
1: दिया, अब
0: जी
1: गांव वालों की जिम्मेदारी
0: गांव
1: है कि
0: वाले
1: इसको
0: अगर
1: अच्छी
0: इसको
1: तरह
0: ले
1: से
0: ले
1: देखभाल
0: तो
1: रखें।
0: गांव वालों को वो मेंटेनेंस का भी एक वे आउट है जो उसमें बुकलेट में लिखा है, तो गांव वालों का VWSE में कुछ अमाउंट आएगा, उनका अपना भी कुछ
1: बिल्कुल
0: कंट्रीब्यूशन ऐसा पॉसिबल होता है, वो एफोर्ड कर सकता है, तो ऐसा है स्कोप में पूरी तरह से वो बुकलेट जो है अभी आ रहा है। जब गांव वालों के पास खुद जाएगा वो, ये है कि लोगों के पास जब आता है सेंस ऑफ ओनरशिप, जब उसको आता है तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आ जाता है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उस हिसाब से उनको चलाना है। ऐसा नहीं है कि भाई पीएचई फिर कुछ नहीं करेगा, तो पीएचई जो है जो मेजर जो इश्यूज है उनमें फोकस करेगा,
1: बिल्कुल
0: तो इस तरह से ये जो चीज है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी अच्छा स्ट्रेटेजी है इनका।
1: तो डिपार्टमेंट में लोगों के लिए जब इतना कुछ किया है तो अब लोगों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको अच्छी तरह से ख्याल रखें, महकमे का साथ दें, इसको लंबी समय तक चलने के लिए डिपार्टमेंट का साथ देना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे कुछ गांव में हर घर में पानी पहुंच गया है, फिर भी वहां इश्यूज ये रहता है कि एक घर में पानी जो है वो क्यूरिंग के लिए इस्तेमाल करता है या कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करता है या गार्डनिंग में इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से दूसरा जो पड़ोसी है उनके घर में पानी नहीं आता
1: नहीं
0: है,
1: है बिल्कुल बिल्कुल
0: तो या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कोई पानी छोड़ के रखता है, फिर दूसरा वहां तक पानी नहीं
1: नहीं
0: पहुंच
1: पहुंचता
0: पाता,
1: है बिल्कुल
0: तो ये जो सेंस ऑफ इस तरीके का अवेयरनेस, इस तरीके का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे घर में पानी इतना ही है, तो एग्जिट इसमें क्या है जेजेम का, मैं पहले बताना भूल गया, इसका है 55 LPC, यानी
1: बिल्कुल
0: कि पर डे देना है, पर पर्सन को देना
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: तो गवर्नमेंट ने तो कट एंड क्लियर कर दिया है कि इसको इंश्योर करो, लेकिन लकीली हमारे गांव में पानी अवेलेबिलिटी अच्छा है, तो अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पानी को ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज
1: इस्तेमाल
0: करें और
1: करें,
0: टैप को बंद करें
1: बंद
0: जितना
1: करें,
0: रिक्वायर्ड है उतना
1: जरूरत के
0: यूज
1: मुताबिक
0: करें,
1: इस्तेमाल
0: जी,
1: करें
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमें पानी का दिक्कत बिल्कुल नहीं
1: नहीं
0: होगा,
1: है बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: जी।
1: तो रफी साहब, आखिर में आप करगिल के आवाम को पीने के पानी की जिम्मेदाराना इस्तेमाल, पानी के जिया से बचाव, मकामी आबी जराए के तहफ्फुज़ और पानी की फराहमी के बुनियादी ढांचे की मुनासिब देखभाल के हवाले से हमारे सामीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो जो मैंने अभी बोला वही मेन चीज है, दूसरा जो है जो सोर्स है हमारे जो चश्मे हैं, नाले हैं, पॉन्ड है, इनको प्रोटेक्ट करके, इनको गंदगी होने ना दे, इनका साफ सफाई रखे।

0: दूसरा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है।
1: बिल्कुल
0: और तीसरा जो है, गांव में जो हमारे कमेटी है, पानी समिति है, VWO, इवन दो कि हर इंडिविजुअल जो है, पानी जो है, एक एक बूंद जो है
1: दी
0: बहुत
1: है,
0: प्रेशियस
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो हमारे यहाँ भी हर साल जो है पानी जो है वो कम होते जा रहा है
1: कम होते
0: ग्लोबल
1: हैं
0: वार्मिंग की वजह
1: वार्मिंग की
0: से।
1: वजह से।
0: अगर
1: बिल्कुल
0: हम अभी नहीं समझे पानी को किस तरह से यूटिलाइज करें, तो फिर आने वाले दिनों में पानी जो है वो एक बहुत बड़ा
1: बड़ा चैलेंज का
0: मुद्दा,
1: होकर समय
0: हाँ,
1: में आ
0: बहुत
1: सकता
0: ज्यादा
1: है।
0: बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो
1: बिल्कुल
0: पानी की इम्पोर्टेंस को समझे और पानी को अच्छे से इस्तेमाल करें, ये है।
1: शुक्रिया जनाब मोहम्मद रफीक साहब, आकाशवाणी करगिल के इस खसूसी प्रोग्राम में शिरकत करने और करगिल में जल जीवन मिशन की पेशरफ्त, दरपेश चैलेंजेस और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में अहम मालूमात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साफ और महफूज पीने का पानी न सिर्फ हर इंसान की बुनियादी जरूरत है बल्कि सेहतमंद और पायदार माशरे की बुनियाद भी है। करगिल जैसे दुश्वार गुजार खित्ते में पानी के वसाइल और बुनियादी ढांचे को तवील मुद्दत तक महफूज रखने के लिए मकामी आबादी का ताउन और फ़ाल शमूलियत इंतहाई अहम है। इसी के साथ RNU आकाशवाणी करगिल की जानिब से सेवा संकल्प अभियान का आज का यह खसूसी प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए।

0: 방로 자레나 자레노 바닥사 락축 박축 망캬살레노 닥사 용광 릭자정선 얼마나 락축 야파낭 장만한 대상에 가가사
1: 장만군나 릭스마오 봉아타 요토노 게나 조토글라 쇼제레 쇼세즈데레 테네가타 쇼낙즈테 다 율라즈테 마오 봉아타 요토노 봉노주 따띠 창메낭나 테네가 단지솔 라모카오 송타노 율라포 송타노 야르파 송타노가 장만가타 단지시나 가베카나가타 용고 익담가타 스펠링 엔체시 스캅즈 요토노주 티오카오 가타 망체스 가타 라나넨 테노네
0: 가세 칼레 닥세 야르페토그나가지에로 스나니 존첸 칼레야 Yarpanang shorted Bernak then chickens. Bernak was the Segale, the big Yana Yunia Chakandigong and Bayale. Seokarang Saskia Azuke Tanatang to Chasik Azuki Omilu. Yarpakorang with the Sangatan Katanga Chakan, you let you pongle. You let Mangarik Tangchana, Dantana, the Samaka, the Namanka Lalenza and Kale. Changme, Topikangatangalis Nasumino Reale, Sangatan Rochangzere, Selchangzere, Selchangzere, Telchkonmori, Minyongaminugle, Maschango Yongdugle, Maschango Manka, Danba Tepikonmori Yongdu, Maschangola Chumana, Mongor Gosinjadu Kale.
1: Baji Tenata, Gatch Metonata, Badin San, Gatch Metonata, Bartusnata, Zadin Samnology, Gans Mabur and Dajin Batman Pingata, Tugus Met Pajunan, Sakasajas and Lobster, Gundupology, Sakaratanches Picane, Tenata, Chignichina, Hol Mioches, Chignichina, Patakunata, Adumichas, Vijasantal, Tenches Lion, Teneto, Tusman Pungata, Gordupology, Tenekazuchi, and Talakin Churches is captured and all.
0: Mana Atana Jaraka, your Natakoran, Sosoran Salnatic Song Saint Jadokale, Yarpakoran Lenji, Casalpali, Putnis Mana. Jepur kosin cah tu kalle, putni sumle, putni sum ji chana, dene koy patak cangcana hal jukcana, tore mana cahta nang atang cahta lang lamu, kocah lang lamu. Yaspa korang len korang alaga, cangma korang alaga, kusu ta culi sestang jukcin cah dugle. Magar yaspa nang yulan nang debar biang kusu culi tangna, dene a patak bos manggo hal aduk bos basa culi un kusu un lan basa cikai kaksporik songsin cah tu kalle kasa.
1: Kujab sa ishe manggilat, yang gagar unas spesies kemerik sma umpongata iyo dene, ladas pot dene atas saca thombek. Mix some person, then got a jimbat monk ping at a judupon, Jutazam Shinata Yuamidu, Merix Kunikangata, Laglinchon, Shemlemeshi, Bengan, Yasumerix Mamponata Yutan upon you. Tigunikangata, Zimbabwe winning at a Laglinchona, Tigunata Yungu, Yonches Caps Yutenoga. Yankazuchinole.
0: Casa Caleta in Tomna Nemo Tan Lugunica, Coman, a young Galay no Calingatan, Spetan Legon, Tocalte, Tosun Cornula, Tom Nemo Canonica, then La Lenzana, Yongo Manamango, Rocale, Magia, Texic, Yul Tombasana, Gomrik Sombasana, Rangaligmena, Yangalik Talingatan, Yella, Congolia, Congo, Tos Pasana, Yongo Tataseman, Shani, some specimen among Goyos, that's a Mindamindas Minion of Pacalena, Talun King, Kangu, Tangadulta Sangu, Tome Manachi Sama, Garunsa, Yongdog Mole Molen of Mion Chesmana, Cosan will become a Mion Chesmana. Inca minyak pakai le batang nang yale, lapatkan bo nang atang cisang mas zob gosono sanang minang chu cisang mas laglen bo jadna miyang cemana ya netpanu kalle kasih.
1: Tujuh cheese kujabs ishe wangelle tene diring erang tiar manusikote tene ngerang nang, jingbati thongoms nang nyampung nyampu tene ngejaran y tene kamyul guni nang, badi cerka gon ya stonto ki thoga ma jipsal mulazas tene diring erang.
2: Dari sepentis. Sponsor program jangin cikat pin kisan vani. Midim wewikidu akash vani kargilin waxpo shami baja truk cinduk. Kasata akash vani Delhi kena Hindi nangrejing khabarun rilevet rilevla gerbazat.
3: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
4: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
3: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ सांस

सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 10 लाख की लॉटरी मेरे लिए। वाओ।
1: फर्जी ऑफर से होशियार,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: मीडियम विविकाजु आकाशवाणी करगिलिन कसता यन मजद गांधी कथा।

0: Milim yo trugyan ing shish binaj bi kilohertz dun milim yo stong chigna agabgyan ing shish binaj bi kilohertz FM so sharia 1 megahertz dun mobile app news on AIR kanches akashwani kargil kan internet gran chiyot waqs bo khabarun to chindu kasata akashwani srinagar kana urdin khabarun na tafsil awri lebet jile ula gher bazat
1: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम ऑटो पर्सनल पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से SBI the banker to every Indian नियम और शर्तें लागू

0: उन्हें दीही इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सड़कों के राबते को बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिका तामीराती एजेंसियों पर जोर दिया कि वो तरक्याती कामों को मुकर्रर वक्त के दौरान मुकम्मल करें। बाद में उन्होंने धर्मशाला खामपोरा सराई गांवों को वांपोरा से मिलाने वाले पुल का संग बुनियाद भी रखा। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने आज कुलगाम के दौरे के दौरान बानीमुला और इसके मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। दौरे के दौरान उन्होंने जंगलपोरा में हेल्थ सब सेंटर का संग बुनियाद रखा, जिस पर 29 लाख रूपये लागत आने का तखमीना है। सकीना ऐतू ने बानीमुला में जायदा 95 लाख रूपये वाले 6 कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला स्कूल इमारत का भी संग बुनियाद रखा। मकामी लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी सतह पर अवामी खदमात की फराहमी मौसर तरीके पर यकीनी बनाने की वादाबंद है। उनके हमरा नाजम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर निगहत यास्मीन भी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टंगडार करना में ऑपरेशन दृष्टि के तहत एक मेगा आई सर्जिकल कैंप कामयाबी से मुनाकिद कराने के लिए आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टरों और एहलकारों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने फौज की इस पहल की सताइश करते हुए कहा कि इस सरहदी इलाके में अंडरग्राउंड ऑपरेशन थियेटर में 220 लोगों का ऑपरेशन करना एक काबिल फख्र काम है। वाजह रहे कि फौज की आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज विंग ने कुपवाड़ा जिले में रवा महीने की 24 और 25 तारीख को मेगा आई सर्जिकल कैंप के 10वें एडिशन के दौरान 220 जराया अमल में लाई। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने इस कैंप का दौरा करके वहां मरीजों के साथ बातचीत की। उन्हें बताया गया कि AFNS के मेगा कैंपों के दौरान 1.5 लाख मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है और यूटी के 10 अजला में 3,500 जराया अमल में लाई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म के जनसेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजह हो जाती है। सरकार विकसित भारत 2047 का हदफ हासिल करने के लिए मुसलसल काम करती रही है। जामिया तरक्की और सामाजिक बाइख्तियारी के नतीजे में अवामी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर भी तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के सिलसिले में समाप्त करें नेचुरल फार्मिंग से मुतालिक ये रिपोर्ट।
1: कुदरती काश्तकारी को पायदार ज़राअत, जमीन की सेहत बेहतर बनाने और किसानों के अखराजात कम करने के एक अहम तरीके के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प अभियान की एक कड़ी के तौर पर कुदरती काश्तकारी के कौमी मिशन के तहत कीमियावी खादों और जरी अद्वियात के बगैर खेती बाड़ी को फरोग दिया जा रहा है। इसमें रिवायती तरीकों, मवेशी पालने, मुख्तलिफ फसलें उगाने और मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले कुदरती जरी अज़ा का इस्तेमाल शामिल है। इसका मकसद जमीन की ज़रख़ेज़ी बेहतर बनाना, माहौल को महफूज रखना और आबोहवा की तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर में भी कुदरती काश्तकारी को फरोग मिल रहा है और मरकजी वजारत ज़राअत के मुताबिक यूटी में 160 कुदरती काश्तकारी क्लस्टर कायम किए गए हैं, जिनके तहत 6,900 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा शामिल है और तकरीबन 19,800 किसान इससे जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरती काश्तकारी से कीमियाई अज़ा पर इन्हिसार कम करने के साथ साथ बागबानी, सब्जियों और रिवायती ज़राअत को भी फरोग मिल सकता है। कुदरती काश्तकारी से खेती बाड़ी, ज़रई पैदावार की तैयारी, मार्केटिंग और कुदरती जरी अज़ा तैयार करने के शोबों में रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। यूं कुदरती काश्तकारी पायदार जरिए माश के साथ एक सेहतमंद और मजबूत जरिए मईशत के कयाम में भी मददगार साबित हो सकती है। शबीरुज़्ज़मा, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
0: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के शहरों और कस्बों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने, नीज उनकी जाजबियत में इजाफा करने के लिए अमलाई जा रही मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अमृत की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर चूंकि एक सियाहती इलाका है, लिहाजा यहां के माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए सरकारी इदारों के साथ साथ मकामी लोगों को भी अपना मुअसर रोल अदा करना चाहिए। मीटिंग में अमृत 2.0 की हसूलियाबियों पर भी सैर हासिल तबादला ख्याल किया गया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज जनूबी कश्मीर को शुमाली कश्मीर से मिलाने वाले रिंग रोड के पहले मरहले पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। गालंदर से नारबल तक तामीर होने वाले रिंग रोड के पहले मरहले का जायजा लेने के बाद जराए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस शाहरा को दिसंबर के आखिर तक आमद रफ्त के काबिल बनाने के लिए तमाम कोशिशें बरोएकार लाई जा रही हैं, जबकि इसकी

0: आमेर में हायल कई रुकावटों को दूर किया गया है।
1: हमारी कोशिश ये थी कि जायजा लें कहां कहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इनकम्बरेंसेज हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए हम कैसे सपोर्ट करें ताकि हम टाइमलाइन से कंप्लीट करें। एज ऑफ नाउ जो मुझे बताया गया है एनएचए की तरफ से, इन्होंने दिसंबर एंड की एक टाइमलाइन फिक्स की है इसको थ्रू करने के लिए, और उसको हम अचीव कर पाए तो कैसे हम प्रोग्रेस को और तेज करें उसके लिए हमारी ये कोशिश चल रही है। तो आज की डेट में कोई भी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ना एक्विजिशन के लिहाज से, ना किसी यूटिलिटी के लिहाज से, जिस वजह से काम रुकी, इस टाइमलाइन को हम अचीव कर सके और सर्विस जल्द से जल्द।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूनी मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर दस्तियाब होगा। हिन्दी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र किया जाएगा। नई दिल्ली में आज भारतीय इलेक्शन कमीशन ने एक अहम मीटिंग में मुल्क में जारी खसूसी वोटर फहरिस्त नजरसानी यानी SIR से मुतालिक कई अहम फैसले लिए। कमीशन के मुताबिक जिन लोगों को वोटर फहरिस्त में नाम शामिल न होने या किसी गलती की वजह से नोटिस मिला है, बूथ लेवल अफसर उनके घर जाकर जरूरी कागजात हासिल करेंगे और उन्हें दफ्तर में बुलाने की जरूरत नहीं होगी। जिला चुनाव अफसर से कहा गया है कि वो बेघर अफराद, गरीब मजदूरों और आरजी शेडो में रहने वाले अफराद की सहूलियत के लिए खसूसी कैंपों का इनेकाद करने के अलावा हेल्प डेस्क कायम करेंगे। मीटिंग में बताया गया कि 20 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में SIR पहले ही मुकम्मल किया गया है। कमीशन ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर फहरिस्तों में रह गए हैं वो अब भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। कानूनसाज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने आज नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर से मुतलिक कई अहम मामलों पर गुफ्तगुशनीद हुई। मीटिंग में सुनील शर्मा ने वजीर दाखिला को यूटी की सलामती सूरतहाल, अमन कानून, तरक्याती इकदाम और आवाम को दरपेश मुश्किल के बारे में जानकारी फराहम की। दरी असना बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने जनसेवा से देश सेवा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज सुंजवान का दौरा किया, जहां उन्होंने फलाह बहबूद और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए तलबा, असातिजा साहिबान, आंगनवाड़ी वर्करों और मकामी खवातीन से बातचीत की। जम्मू में आज प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने एक मीटिंग की सदारत करते हुए जारी सेवा संकल्प अभियान का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वो इस मुहिम को बुनियादी सतह तक पहुंचाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान सिर्फ कैलेंडर में एक प्रोग्राम तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे खिदमत और आवामी राबते की एक मुस्तकिल तहरीक के तौर पर उभरना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर और एमएलए हबाकदल शमीमा फिरदोस ने आज अपने हलके के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मकामी लोगों से बात करके उनके मसाइल और मुश्किलात सुने और मुतलका हुकाम को आवामी शिकायत के फौरी इजाले की हिदायत दी। इसी दौरान पार्टी के नायब सदर और एमएलए लालचौक एहसान परदेसी ने इंतजामिया से अपील की है कि वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत मीर सैयद याकूब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में जायरीन और अकीदतमंदों के लिए खातिरखा और मुनासिब इंतजाम किए जाए। उन्होंने सोनवार में आस्थान आलिया पर हाजिरी देकर इंतजाम का जायजा लिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज ने ट्रेडिशनल एंड प्रोफेशनल कैलीग्राफी में मुश्तरक तौर एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। पहलगाम में पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेहत से जुड़े मुतलकिन के इश्तराक से रन फॉर फन प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद इलाके की सियाहती सरगर्मियों को फरोग देना है। इस प्रोग्राम में सयाहों के अलावा मकामी और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ, एसडीएम पहलगाम और कई दीगर अफसर भी मौजूद थे। सीईओ ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: पिछले दिनों में भी हमने काफी सारी एक्टिविटीज की, पिछले महीनों में भी की, तो आगे फ्यूचर में भी ये चलती रहेगी। इससे एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट होता है, तो एक पॉजिटिविटी फैलती है, तो ऐसे इवेंट्स लगातार होते रहेंगे। आप भी देख रहे हैं टूरिस्ट का रश लगा हुआ है। एक तो जो हमारे लोकल यहाँ के टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट वो आ रहे हैं, तो पहलगाम फिर से आबाद हो रहा है एंड वी आर वेरी होपफुल कि विंटर के आते आते इसमें वही बूम दिखने को मिलेगा जो दिखता था।
0: جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے سیمینار ہال سری نگر میں آج ایک ادبی تقریب کے دوران معروف قلمکار اور فلم میکر علی عمران کی انگریزی نظموں کا مجموعہ انسین وائسز کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔

मेक इन इंडिया के 12 बरस और सेवा संकल्प अभियान को एक ही जाविये से देखें तो बुनियादी तसव्वुर तरक्की को पैदावार, पैदावार को रोजगार और रोजगार को अवामी शराकत दारी से जोड़ने का है। जम्मू कश्मीर के लिए इसका अगला मरहला मकामी नौजवानों की स्किलिंग, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, आईटी, ग्रीन एनर्जी और जदीद सन्नती शोबों को मजबूत करना हो सकता है। असल कामयाबी तब होगी जब मेक इन इंडिया की बड़ी कौमी कहानी कश्मीर के एक नौजवान कारोबारी, एक कारीगर, एक किसान, एक खातून एंटरप्रेन्योर और छोटे सन्नती यूनिट की रोजमर्रा मुआशी हकीकत से जुड़ जाए। 12 बरस का ये सफर इस बात की याद दहानी भी है कि खुद इनसारी सिर्फ मुल्क में चीजें बनाने का नाम नहीं, ये सलाहियत पैदा करने, मकामी मौके बढ़ाने, इख्तिरा को फरोग देने और हर खत्ते को कौमी तरक्की के अमल में शरीक करने का मुसलसल अमल है। और इसी मकाम पर सन्नत, खिदमत और आवामी शराकत दारी एक दूसरे से जुड़कर एक वसी तर कौमी मुआशी सफर की शक्ल इख्तियार करती है। तबसरा खत्म हुआ, शब्बख़ैर।

जय हिंद। संगीत से भरा हुआ फौजी भाइयों का ये मनपसंद प्रोग्राम लेकर फिर से एक बार आपका दोस्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तमाम प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों और फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं प्रोग्राम की पहली पेशकश सोनू निगम और शहरिया घोषाल की आवाजों में।

लीजिए फौजी भाइयों, सुनते हैं शिकारी फिल्म से प्रोग्राम का अगला नगमा कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मेरे लिए। वाओ,
1: फर्जी ऑफर से होशियार।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: RBI कहता है
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

लीजिए फौजी भाइयों, सुनते हैं सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाजों में प्रोग्राम का अगला नगमा तुम बिन फिल्म से। फयाज अनवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है निखिल।

0: Del serpente es program gen en chigut pin yulstrung smak mi unifia. Medium wevi ken chaz akashwani kargile ken antana gregen chut waxpo khabar ni to chinduk. Kasata akashwani dehli ken hindi angrezi dona urdin khabarun rilebet. Rilevla gerbazat.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम में स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
3: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों में जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
4: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट

0: रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
0: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
2: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
4: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहाँ से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
2: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल

0: रक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एसआईआर का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर एसआईआर के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में एनसीसीएफ की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मंशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे और एशियाई खेलों में भारत की खवातीन और मर्दों की कबड्डी टीमों ने जापान में सोने के तमगे जीते हैं। तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने मर्दों की शॉटपुट में चांदी का तमगा जीता। तमगों की फहरिस्त में भारत सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ 30 तमगों तक पहुंच गया है। और अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओस इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी की मुहिम एसआईआर के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। इसके बाद बीएलओज उन दस्तावेजात को ईसीआई नेट प्लेटफार्म पर अपलोड करेंगे। नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन की मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। कमीशन ने वजाहत की कि इस तरह के अफराद को इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जानिब से समात के लिए तलब नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि समात सिर्फ गैर मामूली हालात की सूरत में ही की जाएगी और वो भी तरजीहन ऑनलाइन होगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एसआईआर का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बिहार और मगरबी बंगाल समेत 20 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का काम मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि एसआईआर के दौरान अगर किसी शख्स का नाम शामिल नहीं हो पाता और वो अपना नाम शामिल कराना चाहता है तो मुतालिका इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर को दरख्वास्त दे सकता है। चीफ इंतखाबी अफसर, जिला इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर इन वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी मुहिम का आगाज करेंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर की दरख्वास्त के पेश नजर दावे और एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिसों, दावों और एतराजात को निपटाने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
0: नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल बराए मीडिया आशीष गोयल ने कहा कि आज कमीशन की एक मीटिंग हुई जिसमें आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 24 जून को तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए जारी किया गया एसआईआर का हुक्म कमीशन की इत्तेफाक राय पर मबनी मंजूरी के साथ जारी किया गया था जिसका आगाज बिहार से हुआ। कमीशन ने यह वजाहत भी की कि काबीना सेक्रेटरी को भेजा गया खत इंतखाबी कमीशन के किसी पॉलिसी मैटर या उसके आईटी डिवीजन से मुतालिक नहीं था बल्कि यह खत इंतखाबी कमीशन में डिपुटेशन पर आए एक ऑफिसर के कामकाज से मुतालिक था। बीजेपी ने अपोजिशन पार्टियों बिलखसूस कांग्रेस की जानिब से एसआईआर के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन पर आयद किए गए इल्जाम की मजम्मत की है और इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर

0: लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंतखाबी कमीशन प्रेस के लिए एक नोटिस जारी कर चुका है जिसमें उसने कहा है कि इंतखाबी फेहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR से मुतालिक फैसले आला इंतखाबी कमिश्नर और दोनों इंतखाबी कमिश्नरों की रजामंदी से किए गए हैं। जनाब प्रसाद ने कहा कि केरलम कांग्रेस ने एतराफ किया है कि उसकी जीत की एक वजह SIR था क्योंकि इस अमल के सबब उन जाली वोटरों को हटा दिया गया जो गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थे।
1: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है क्योंकि वामपंथियों में जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले फेक वोटर और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलाआत और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर किया जाएगा। वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज केरलम के कोल्लम के नजदीक कुंदरा में सारिफीन से मुतालिक भारतीय कौमी इमदाद बाहमी फेडरेशन NCCF के तहत मुख्तलिफ तरक्याती इकदामात का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में केरलम के मुस्तकबिल की खातिर बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं और इमदाद बाहमी के शोबे को इसे बरूए कार लाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आजादी के बाद से लोगों की हमेशा ये मांग रही है कि मरकज में इमदाद बाहमी से मुतालिक एक अलहदा वजारत हो। नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तदार संभालने के बाद इस सिलसिले में इकदाम किए गए।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी की 73वीं सालगिरह तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा एक दीगर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने खिदमत को एक मिशन में तब्दील करके एक मिसाल कायम की और लोगों की खिदमत के जज्बे को एक तहरीक में बदला जो दुनिया भर में लोगों तक पहुंची।
2: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों के दरमियान मंशियात के इस्तेमाल को एक अवामी सेहत के मामले के तौर पर ही नहीं बल्कि बच्चों के तहफ्फुज़ के एक मामले के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। वो पटना में आज बचपन की बहाली, मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और देखभाल और तहफ्फुज़ के जरूरतमंद बच्चों को असर नौ मरबूत करना के मौजू पर होने वाले सेमिनार से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया कि मंशियात के इस्तेमाल से मुतासरा बच्चों को तहफ्फुज़, इलाज, काउंसलिंग, बाजाबादकारी और तालीम, निज खानदानी जिंदगी के बहाली के मौके फराहम किए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने तालीमी तसलसल, महफूज खानदानी माहौल और बाज आबादकारी के अमल में देखभाल की अहमियत को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने पटना में मुल्क का अव्वलीन मुतासरीन के हकूक के मरकज का भी इफ्तिताह किया। अपनी नौईयत का ये अव्वलीन मरकज बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इमारत में कायम किया गया है। यह मरकज मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम पर कानूनी हकूक और जरूरी तआवुन फराहम करेगा जिसमें वो मुतासरीन भी शामिल हैं जो नजर नहीं आते। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के हमरा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र सिंह पटेल ने आज कच्छ जिले में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 150 टन योमिया सलाहियत वाले ई मेथनॉल प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस्तेमाल से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने उजागर किया कि इस प्लांट